0: सुनो ना, आइए हम लोग दुई बजे कक्षा
1: ए समय को साथ में जेपीयू सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गढ़े कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: सुनौली म आफ्ना बैरागले गाउँछु बस आछ बनाउले
1: काजी सागो चुनु चुनु जित्ता भड़कुनाले मेरा साई पराया भया।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: सेवा उपलब्ध छ।
1: साथै ओपीडी सेवा आइतबार देखि शुक्रबार बिहान 9 बजे देखि साँझ 4 बजे सम्म। यो सेवा लिन ईसीएचएस कार्ड र रिफरल लिएर आउनु होला। पुनश 70 वर्ष माथिका भूपुहरूलाई रिफरल चाहिँदैन।
0: विस्तृत जानकारीका लागि सरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा, फोन 061-552-493, 552-494, 582-778।

0: और ना यो तो सात से एक से पाँच थोपलो चार मेगा हर्ट्ज को रेडियो आदि खोले रसोई क्या है।
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आधी खोला एफएम 105.4 मेगा।